ताबिरिबसे आकाशवाणी इम्फाल की मीडियम वेव मीटर चहुम निफु दशमिक अमा किलोहर्स चनीपाल मरफुनिथु दसंदुक चिरिबा कंगला चैनल दिकिने हौजिक ताबिरसे युमनाम बिसोरजित सिंह सकप नोटा गोस्था कुदुल तमचिरी ताबिरसे।

0: Tabire, Tonabam Sandip na isay gisur da kongba violin. Akashwani Imphal, Hauzik Ayuki Pungnipal Tarak Pagaluna, Delhi Dagi Rileda Samacha Prabhat Morning News Samadi, Silong Dagi Rileda Awang Nungpuk Lamdam Gi Pao Singh, Matang Matang Oina, Mikup Karagi Manungda, Taba Fang Biragani.
1: के आया मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत

0: में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति

0: साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने

0: हेलो
1: हेलो
0: फजबीरो
1: हेमा दाइमो नत्रो
0: माने फजबी ऐने अस्याम कुइरीने पाउ फोंगदाबा
1: ओ दाइमो याम नुंगाई अदो याम कुइरे को उनदाबा
0: होय
1: अदो दाइमो मागी करी पाउ लेगे
0: हा
1: अस ngai बसे या वाजा निंगो सुक याम बसे हिसे कैमो हरकते मासे थमोई दे खरा कंजाने
0: थमुई कनब नती खांग कनबा कमिटेड ओइबा हेरो हायो
1: अदो करी पाउ लेरगे याम तानिंगे
0: मेम साहेब ओइरगा एखोय बुदी काउबी खुनुको
1: दाइमो सिदि करी पाउ नोबा
0: मास्टर दने दियुगी सेकेंड दारे दना एखोय सार दो ओइ
1: हा ओइ बेरो दाइमो
0: बेनी सिबु फागी याबा पाउरो
1: ओ
0: आईएस ट्राई तो ये फंगदबा माले सो हायरी
1: याम नुंगाई दाइमो अदो अखोय मोरांग दला ओ चा थाक्से
0: लाके लाके लाके दब सुलाई रबनी
1: कैनो लाका दब लेर आइबो
0: मालेम गिने इमा ग पाबुंगना मागी खंगना बनु पी लेब्रा हंगे इंगोंदा अहिना नंगी मरम द सी ना ना हाइडोक्रे
1: हेमा अस यामी काइजे दाइमो अस नंग सिदि याम तल्ले अस याम फरक दाइ दाइमो
0: सिबु फरक लने हा असिंग बनी कैनो अस अहलनी दुना मुक्तोइबा नंग उनिंग बना गाउरे दना हाइ लेरबनी कमाई तो सिगे मेम साहेब
1: आ दाइमो दाइमो अस अस दाइमो
0: मालेम दो आईएस लोर के दिसंबर मिडल द थोरा आनी मा थोलक त्रिंग आइदा अहल नि दो पुर ग आइना चा थक बला आनी यानिंग द्रबो मेम साहेब
1: अस यानिंगे दाइमो

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है, तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
2: जी,
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
2: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
2: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
2: जी,
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
2: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
2: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
2: जी,
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
2: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
3: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना। कहने दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ। ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान हैं।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। हाँ। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।

0: जी सुनिए।
1: हाँ
0: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
1: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
0: अरे अरे इसको भी डालो।
1: हाँ हाँ
0: ये देखो
1: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था देखो, अब कितना बड़ा हो गया है ना।
0: प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा बच्चा।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
1: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
0: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
1: हाँ।
0: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
1: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: ऐसा लग नहीं रहा है जैसे हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
2: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
9: अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
8: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
2: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से, लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार। कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: Hello, Kungang. Live phone-in program.
1: Hello, Kungang. Live phone-in program. Tha kudengi aroiba thangja. Kungangi thauramda sandokchaba.
0: Hello, Kungang. Live phone-in program. Chaliba tha sigi oina. Lakliba megi tang kuntra. Thangja numit. Numidang pungtaruk minit nifu. Kungangi thauramda sandokchagani. Hello, Kungang. Live phone-in program. Thamjari behiram ayok ngagi section thaurang. Expert oina lengsin bigadaba Dr. Saubam Khogen Singh. Senior Scientist and Head KVK Ukrul ICAR Research Complex NEIS Region.
1: Miyamna Studio ke telephone number
0: 9362327078 call tawbiraktuna thoram asibu saruk yabiyo. Hello Kungang.
1: Live phone in program.
2: Agaspan Imphal. Howzik tabirasi. Hello Manipur Haksail. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯅ ꯆꯤꯟꯂꯩ ꯄꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯊꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯗꯁꯅꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁꯔꯖꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯤꯗꯪꯃꯌꯨꯝ ꯗꯦꯅꯤꯁ ꯁꯔꯃ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7 ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯈꯤꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯅꯤ
3: Hello Manipur Tabir Singhbu Ahan Bamakta Taram Nokchari Nasi Sirai Numit Oibana Mahusa Gum Haksel Gi Live Phone In Program Se Dumak Thamjari Nasi Gilokuchari Behram Ningsing Jakre Koina Kari Kari Gumbamatam Dai Koi Mipum Kuding Maktamasi Punsi Gi Tanka Ama Natraga Amadati Soidana Loina Makteng Nabiram Gani Natraga Natsahi Mado Eregasu Amur Anirakti Adum Hekta Teng Nai Nasi Gi Seduna Chinlai Poktokpa Adum Mipum Kuding Maktateng Nabani Satetpa ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛ ꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥꯗꯥꯁꯤꯅꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯠ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁꯔꯖꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯤꯗꯪꯃꯌꯨꯝ ꯗꯦꯅꯤꯁ ꯁꯔꯃ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
4: ꯇꯔꯥꯝꯅ
3: ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯆꯤꯟꯂꯩ ꯄꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯊꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ 9362327078 ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ 9362327078 ꯐꯣꯟ ꯍꯥꯡꯗꯅ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕꯁꯤꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯂꯩ ꯄꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯊꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯜ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯧꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
4: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯁꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇꯥꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯜꯁꯔ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯏꯟ ꯗ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯄꯤꯊꯤꯂꯤꯌꯝ ꯑꯣꯔ ꯀꯅꯦꯛꯇꯤꯞ ꯇꯤꯁꯨ ꯑꯣꯔ ꯕꯣꯠ ꯍꯥꯏ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯟꯁꯥ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯂꯦꯌꯔꯗꯨꯔꯥ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔ ꯌꯥꯎꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯜꯁꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯏꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯔꯤꯀꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝꯗ ꯐꯖꯈꯤꯕ
3: ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ
4: ꯃꯇꯝ ꯐꯖꯩ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯍꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯀꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯕꯠ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯔꯤꯀꯔꯦꯟ ꯇꯧ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩꯁꯤ ꯑꯦꯞꯊꯦꯁ ꯑꯜꯁꯔ ꯅꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯦꯞꯊꯦꯁ ꯑꯜꯁꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯄ ꯁꯥꯏꯁ 5 millimeter ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯦꯞꯊꯦꯁ ꯑꯜꯁꯔ ꯃꯦꯖꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯊꯟꯗ ꯇꯧꯖꯔꯛꯑꯅꯤ ꯃꯊꯟꯗꯣ ꯐꯕ ꯅꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯁꯨ ꯌꯥꯏ mi tension loba adagi ya satling ai tension logi ba adagi akoina keno ma trauma ma togi ba haita ko aduna longa laga dum ulcer si se tole adu si si di hapta ama ni da phabal sa hado chingye ba but recurrent type of sing sina amu hoba na e ba adu ga masiga yam aina ma yam da khangjani mi amma na ba masak ama su lei
5: doctor
4: herpes ulcer hanako koi herpes simplex hai bagi hai ta herpes labialis ka stab kar le gira to wo herpes ka herpes ka kai khena ge hai ta ragadi herpes ki oiba ulcer sidi mahi hana halam gani
5: ba hoi
4: mahi hale halaga pokhai akanda phom tor po ulcer duna herpes ulcer oi
5: adu porukpam se
4: mahi halapi amana mahi handabi aduna akoina patient si ye matam da mahi han ve stage la khadi phare lakrgadi hida onakena pidoini masati chamana udoini
5: doctor
4: aduna mobani si yam confusion sa nei aduna pesh anaba khrana laga hida chai phate phate haradi akhoina magi diagnosis to la le haidoini ba ana moi da history ana phajan mun hangwam changani history si matung inna songi se mahi han gi bra handa bra yam na bra na da bra tawu koi gi mai han bi aphthous ulcer
5: gi mahat
4: happy side sina ne mai han bi sina kitang na handle le because is considered to be linked with nerve and all ko aduna moi gi treatment sina tong ale herpes sina viral origin num chakhani ana aduna moi gi anti viral drug am pizer da na aduna ma gi sina sathi ba sain sina yawe herpes zoster gi yawe gradi am sathi
5: hello hello phone si through ebang am dringe sta kha chathe jage
4: ekoi
5: ning si khana jage dori si chin ya manung da pok thok pa chathe pa si gi area se koi gi chot chot chot law ba koi gi lei da bu oiro de gi ngau da bu oiro de gi chimbal gi manung thang ba saruk si da bu oiro khajai gi manung thang ba chot chot law ba chot chot law ba jaga sing si da ayam ba ding
4: ase ayam ma ne
5: oi hello hello
6: दुनिया बदल देते हैं
7: सिर्फ बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड में है मेगा ट्रेंड्स का फर्क यानी वो ट्रेंड्स जो दुनिया बदल सकते हैं
6: बोला था ना फर्क है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
5: तब भी होने रहता
8: सारे जी सही रामपन सूर्य को ऐसी मामा पेप था बगी रियंद मु बोर्डिंग का मुख कोलम ने
4: जिम्मा
8: लोग फंग बगी सी का कोई तारे फंग फंग अन्य ओम फंग ला वो तो कुछ का hatta amutolom ne ai kesu khanda bitum dai ingme tam nei dinna ing gi jeba
4: oi
8: cha ani ohum ule ga mu hore ba
4: yes
8: and ani na thong na hor ma ga kesu ni tau gi ne si doctor le thoi na ta ba ta na da ya ga
4: da si si ai na haija gi ba exact aphthous ulcer do ching doi ne ko aphthous ulcer se kem pakhalu no kem tau de si ani tabu yam thuno aisalan ge haider haira ga di ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯕꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯀꯨꯝꯕ ꯆꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯏꯠ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯁ ꯗ ꯁꯦꯜ ꯔꯤꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯜꯁꯔꯗꯣ ꯑꯣꯏꯁꯜꯍꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯔꯤꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯣ ꯊꯨꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯁꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯅꯨꯡꯁꯟ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯅꯪꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯜꯁꯔꯁꯦ ꯅꯪ ꯄꯥꯈꯠꯂꯨꯅꯨ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯞꯊꯁ ꯑꯜꯁꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯅꯣ
5: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯊꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯄꯤꯟꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯈꯔ ꯈꯨꯖꯤꯟ ꯃꯃꯥꯏ ꯃꯨꯛ ꯄꯥꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯦ ꯀꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯗꯥꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯩ
4: ꯂꯩ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯞꯊꯁ ꯑꯜꯁꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯃꯟꯅꯦꯕ ꯊꯦꯡꯅꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯦꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦ ꯇꯧꯕ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯑꯣꯔ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯄꯤꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ
5: ꯍꯣꯏ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯜꯂꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯊꯠꯄ ꯄꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟꯗꯨꯅ ꯉꯧꯔꯨꯅꯅ ꯎꯔꯒ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯄꯨ ꯃꯆꯨ
4: ꯀꯥꯔꯞ
9: हेलो फ्रेंड्स, मार्केट का ज्ञानी लाइव फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट समिट कमोडिटीज माइक्रो कैप्स ट्रेंड्स ट्रेंड्स।
10: हाय, क्या हम भी आपके फ्रेंड्स और ट्रेंड्स में शामिल हो सकते हैं?
9: आप कौन?
10: बजाज फिनसर्व एमसी से। टेल मी वन थिंग, व्हाई फॉलो ट्रेंड्स व्हेन यू कैन इन्वेस्ट इन मेगा ट्रेंड्स?
9: मेगा ट्रेंड्स,
10: सी ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, मेगा ट्रेंड्स दुनिया बदल देते हैं।
7: सिर्फ बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड में है मेगा ट्रेंड्स का फर्क, यानी वो ट्रेंड्स जो दुनिया बदल सकते हैं।
10: बोला था ना, फर्क है।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
5: बोला भैया है बम सुहाई माने माने अदु नदी टेंशन द नतब अति करी करी मरम सिंह ना सिगी चिंदिया
4: यस टेंशन नाम ले रहे ऑटो इम्यून है ना मले ऑटो इम्यून से के इम्यून मीडिएटेड है ता टेंशन सी तौरगा ऑटो इम्यून डिजीज है ना खर ले नहीं अदुगा इबन अखुगी टीबी नुगी तो से टीबी आरो सिफिलिस इसादा अखुगी बॉडी दा माउटा अल्सर वेन फोंग दरो पसिया है
5: डॉक्टर
4: टीबी रिलेटेड अल्सर काना सो ले बको अदुना अदुगी दे सिस्टम एग्जामिनेशन ये बर तो आना ओरा सिस्टम एग्जामिनेशन तो कंफर्म तो देने अदुना
5: अदुगी को जे को ने सुन नहीं रखो तार के
4: कर से हम ले रहे
5: हम ले रहे
4: ओ को से हम ले अदुना कोई की ताको से हाई तार के दी हो जे की वायरल हम ले
5: ဟိဒတ်ကြတဲ့ဒီမှာခါကြလို့ရတယ်မချီအလန်ကြီးတော့ဘကြီးအရာပဲပေါ်လိုက်ပြတော့မချီအခွင့်အကွာနှုန်းချဘမတမ်းနူအရာပဲကြတော့တော့ဘခွတ်တော့မချီလိုက်နှုန်းကတဖြစ်ခွတ်တော့မချီရောက်ပဲလိုက်ပြတော့မချီဒီမတန်ငါချီတယ်ဖန်ဖန်ဖန်ဖန်ကျွန်မအဆုံးကြီးကန်ဆန်စေဟိဒတ်နှုန်းချဘအဒုကမာကြီး ဟိဒတ်ငင်ကြီးအလာဂျီနာသွန်ဘရာအဒုကမာကြီးကွာချဘဒဆူနူနာသွန်ဘရာဆူနူနာသွန်ဘဒီကမ်ပယ်စရီသွားလေဆူနူနာသွန်ဘလိုင်းနာဒုံမထုတ်ပစီအဝေဟိုက်အဒကြီးအလာဂျီသွားကဒီအခွေဟိဒတ်ဇာနာဒဘအလာဂျီတဝကီဆူအခွေကြီးမောက်တာမနီဖက်စတေးရှင်းအွိုင်းအယ်လ်ဆိုင်နူဘစီအဝေအဒုကြီးဒီအဒုံရီယက်ရှင်းတဝတာ ရီယက်ရှင်းစာကြီးရီယက်ရှင်းတော့ပအယ်လ်ဆာဒုန်ဘူကော့အဒုကဆုံနမနာပုတဆုံနပုတဆရီဘဒအိနီယမ်ကန်ဆက်တဟန်နင်ဘာအဟိုင်ဇနင်ဘာမဒီဆူကွာတလပစီကုမစီနာအမအခွေကြီးတိုင်ဘောအယ်ဆာမထူဟယ်အဒုအယ်ဆာဒုကြီးစတေးစ်တူဟန်ဇယ်လာကန်ဒအိုအက်အက်အမ်အဖ်အမလေဘူကော့အော်ရယ်လ်ဆာမီကက်ဖိုင်ဘရိုဆစ်ဆာနာ ရှင်နေမြန်မာကတန်လိုက်ထုတ်ပါဟိုက်တာလေကွာနုပန်နုပီလိုင်းနာလိုင်းနာဟန်တီအမ်နုပီဒရှာကန်ထင်းနာဇယ်လေရှင်နကိတုကေဒါအဟမ်အယ်ဆာဖုံတော်ရမနီမိုက်စတေဂျစ်ခရလေဒေါက်တာအယ်ဆာဖုံတော်ရနီအယ်ဆာဂျူနာအခွေကြီးခဇာကြီးထိုးထိုးလောက်ရပေါ့ချေတမ်တမ်နာကန်ဆန်နဘဟိုရနီမိုက်စတေဂျစ်လန်ဇယ်လာကန်ဒဒီယာစေကာဘငါမရွေးဘဒေါက်တာအဒုနာအခွေနာဆီရီယပ်ပင်အခွေပင်လေယတုမသင်မတမ်ဒ ခြံလင်းလင်းလောက်လေနီအခုကိမတိတကန်ကြီးခွေယမ်တန်တယ်လို့နာထောထောထောလောက်နေရေကိုချေတန်ဇန်ကြီးဖိုင်ဘာဖိုင်ဘာအော်လေဟိုင်းနေဘူးကအဒုနာမာနာခဇာကြီးဖိုင်ဘာချေအစ်မေဘီယူနီလက်ထရယ်ဘိုင်လက်ထရယ်ခဇာအနီမတ်ချေတုံတောက်ကလေးကိုဆီကြီးစအနာစတေးစမနုအခဇာကြီးမနုကအဒုနာမာချေမယကာဘစီရအရွေးဘယာကာဘယာကရဟဒီအစ်စန်အလာမင်းစတေးစအခွေယာကာမြေဘယာကာဘခုဘီဆိုင်နာခုခုခုချေခုတို့မီစင်ချေအဟုံ ຈັງບຍາກະດະບໍ່ເນອະດຸດຕະມານງາມັກຕຣີຫາກະອະດຸກະຊີຊູມຸຍຍາກະບງາມດະບກະລຸຍນາລຸຍນານາຊາບຄວດປະດະອະຊາບອະນີທິງມໍໂລກນຸງນຸກຊາບອໍາຕຍາລຸຍດະບໍ່ເນດໍຄເຕີສະໄປຊີຟູດຊິມຸຍໂຕເລຕົງງາມອະລຸຍບອະດຸມະຕໍາຈານີຫູບີລະດີພາເລມະຕໍາຈາຫູດະດີສົມຫັນຈະລະກະ

0: मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
3: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिटी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच

0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव दो दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले छुट्टी 27 मई

0: शाहपुर, आकाशवाणी समाचार शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे पहले यह छुट्टी 27 मई

संगीत जगत में एक नई पहचान दिलाई है। और इसके गीत लिखे हैं नक्श जारवाची ने, संगीत से सवारा है खेमचांद प्रकाश ने। तो सुनते हैं महल फिल्म से।

फौजी भाई, अब सुनते हैं फिल्म संगीत के अगले पायदान पर ओपी नैयर द्वारा संगीतबद्ध फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। गीतकार है SH बिहारी और संगीतकार है, और इस गीत में आवाज़ दी है आशा भोसले ने। तो सुनते हैं ये गीत।

फौज भाई, अब सुनते हैं राजा मेहंदी अली खान के लिखे इस गीत के बोल को। फिल्म वो कौन थी, इस गीत को गायिका लता मंगेशकर ने अपने मधुर आवाज़ से सजाया है, संगीत दिया है मदन मोहन ने। तो सुनते हैं ये गीत।

फजभय भी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इस गीत में आवाज़ किशोर कुमार की थी और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फजभय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के कंगला चैनल से फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म पूनम की रात से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत बोल शैलेंद्र के हैं।

फौजी भाई, अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में गुमनाम फिल्म से ये गीत। बोल हसरत जयपुरी के थे और संगीत था शंकर जयकिशन का। अब सुनते हैं हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म 20 साल बाद से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल शकील बदायूं के हैं, तो सुनते हैं ये गीत।

फुजभा इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: थोरमताबी रिबसिंग बुकुंगंग थोरम तराम नक्सरी करमजरी सिबेमा फंगम लांगदिलिंग सिनबिसी
1: फनी फनी बुंग
0: सिबेमा गसिगि थोरम ग्यान बसेदे अहोंग सांगबम प्रिया रानी देवी ने सक पकुनुंग सेसान तामिनसी सपी के दरिब मतांग सिना लमजेन ताना न बसेन बगी मतांगली तामिनसी
1: फनी फनी बुंग तासी

0: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯔ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯥꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏ ꯁꯤꯗ ꯅꯥꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯤꯅ ꯐꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯞꯁꯟꯅꯈꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯞꯁꯟꯅꯈꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯌꯥꯒꯟꯗꯦꯕ, ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯂꯒꯅ ꯇꯦꯁ ꯌꯥꯔꯛꯏꯕꯒꯩ
1: ꯅꯍꯥ
0: ꯑꯩꯗꯤ
1: ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤ.
0: ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ, ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ, ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯁꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯃꯨꯛ ꯐꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ?
0: ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ, ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ. ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯦꯜꯂꯤꯒꯩ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯦ ꯍꯩ, ꯁꯔꯖꯟꯁꯦ ꯍꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ, ꯗ ꯕꯤꯒꯔ ꯗ ꯏꯟꯁꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯌꯦꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯄꯥꯛ ꯇꯧꯅꯔꯕꯅꯦꯕ. ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯔꯣꯕꯣꯠꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯔꯣꯕꯣꯠꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯌꯨꯒꯦ, ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯂꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯣꯕꯣꯠꯁꯤꯅ ꯃꯊꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯐꯝꯕ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯔꯣꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯖꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯕꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯄꯤꯛꯄꯅꯤꯅ ꯔꯣꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯈꯨꯠꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ. ꯔꯣꯕꯣꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯔꯣꯕꯣꯠꯇꯨꯅ ꯃꯊꯟꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯈꯔꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯔꯣꯕꯣꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯔꯣꯕꯣꯠꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ, ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯂꯦꯟꯕ ꯈꯤꯇꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ, ꯂꯦꯟꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯦ ꯀꯥꯞꯄꯤꯅ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ. ꯅꯪꯒꯟꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯔꯦ ꯀꯥꯞꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ. ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯗꯨ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ. ꯁꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯍꯥꯎꯁ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅ, ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯏꯀꯣ. ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯈꯔ ꯅꯦꯝꯃꯒꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯄꯤꯁ ꯄꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯥꯒ ꯊꯣꯛꯑꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯅꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯊꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯆꯤꯞꯄꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ, ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯞꯇꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯂꯩꯔ ꯄꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯏꯖꯇ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ. ꯑꯞ ꯇꯨ 1.5 cm ꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯅꯩꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯇꯥꯡꯉꯦ. ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯉꯝꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯉꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯇꯦ. ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯂꯩ, ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯗ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯂꯩ. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ, ꯌꯨꯔꯦꯇ꯭ꯔꯣꯁꯀꯣꯄꯤ ꯑꯅ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯄꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯊꯤꯟꯖꯜꯂꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎ ꯆꯪꯉꯅꯤ, ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯂ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩ. ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯁ, ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯦ. ꯁꯤꯃ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯁꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ, ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯑꯦꯁꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯍꯨꯠꯂꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ. ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯤꯁꯦꯅꯦꯜ ꯀꯧꯋꯦ. ꯄꯤꯁꯦꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯔꯀꯇꯅꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ, ꯄꯔꯀꯇꯅꯁ ꯅꯦꯐ꯭ꯔꯣꯂꯦꯊꯣꯇꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ. ꯅꯪꯒꯟꯗꯒꯤ ꯍꯨꯠꯂꯒ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗꯒꯤ ꯍꯨꯠꯂꯒ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ 1.5 ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯅꯩꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ रेक्से पी से नल रेक्से खर लेते हुए किनीज हुई किनी है 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुटने हार्ट पम तौर ब्लड से 20% किनी चंगने वास्कुलर सेंब ऑर्गन अदे हुई एक्सरे से येगाई मपाद खाई इ चेलब मपे इसाई वायरिंग वायरगने से वायरने से मैम से वायर खर लेते मपाद चंग हुईने अब अखोना पूरा हेक्त उग हुप नमीना पेसें अखोना लिंग तौम इग तोना अगर तोना इ चुसनबी है तरह ऑपरेशन तौदब यादवको हेक ऑपरेशन तौरीदे समटाइम्स किनी हुपने रिस्क खर लेसाई हेक्त रिस्क लेनाई दावेदी हेक्त नाइटे नाइ लिंग तौरसूसाई तौरी मीदी दोसा तारी तौरी डॉक्टर से दोसा तयदी पर्सेंटेजी नेब थोकानदी थोद दोसा तब है तरह नाइटब लेकिन अमुकसे लेजर सर्जरी लाइको लेजर सर्जरी से कम तौखे इसिंग मई यूरेटरद तब जाए अहम तौनेसाई अखोना किनीद टू सेंटीमीटर गुम 2.5 पद टू सेंटीमीटर मूल नुसे हुतबीद है तरह हुतबीद इसिंग मई पैर पाचे चंग लिनगने मा सिर सिरी नाब है अहमद की यूर असाई मा इंस्ट्रूमें से खरा स्ट्रेट है तरह थेक्टोकेशन यादेगी फ्लेक्सीबल यू आर एस लेको फ्लेक्सी यू आर एस मैं थेक्टोकेशन तब जाए किनी का मैम से चंग चंग येको किनी चंग चंग येगाई लेजर मेसीन लेबर लेजर मेसीन से तौर से नौ लो थुगैब अब अहम से लेजर मेसीन से 2004 फोर की सेप्टेम्बर लेने हजी की हुप की रेट से हाँ हुप से ऑलमोस्ट अंखई मुहुले होती कुरे हुतब लेजर से अब तौर लेजर तबदी कॉक साब खे इतप खोप की प्रॉब्लम लेते लेजर की प्रॉब्लम लेतब नाको लेजर की चेक्सन सिजनदब यादे अखोना लेजर तबकानी इसिंग थाजलेबको इसिंग थाजनबू यादे एग्जाम्पल है अखोना अखोने चाब है तरह चाबदी हेन चलो हेन चल पुक तो चंगद ओथो फुल किनी माई लिमिट ले तरह इसिंग थाजनबी इसिंग थाजन यादे इसिंग थाजलगे फटब खोट मैम से इ चंगे अमुक याब इसिंग थाजन यादे प्रेसर तब यादे यहां कुन तब यादे मागे अखोना नॉर्मली अखोना तब से 90 मिनट्स कुम तब टू आवर्स पुंग तब जाए पुंगनीम तब जाए सेफ होने तब से 90 मिनट सेफ हो तौर सेफ होने तौर पेसेंट अखोना वही सबकान वही सागनी पेसेंट से नंद्रगे अमुक सेकेंड सेटिंग तब फेब पेसेंट की लाइफ तो मर नुदी हंजन हंजन तौर से नौदूस पैसा ताथोपी ना कम तौर एन हाउ तौर मेनेज तब
1: जाए
0: पेसेंट की मांगदी तौ फटे 90 मिनट्स कम से 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स कुम तब कानब से मागी हुप तौद्रमी पेसेंट से इथ चांस लेते अहम लेते इथपी याऊदब नाते किनी हुपदी इथप चांस से खर लेने अखोद चांस खर ले अहम लेते पेसेंट से नोल डिचार्ज तब जा पेसेंट वहाद्रे पैसा तेंद्रे पैसा खत तिंगे लेजर मेसीन के एक्सेसरीज मैं तौदने पैसा भी तिंग अहम तिंग पेसेंट की मांग पाथरप है तरह पाथरपाई मा हूलगे मा खल कुन कुल लेनी थाने ना मित्रांगानी कुनगनी ना लेने पाखत्नी कौन पाथोगी लेजर से सेफ होब नाब हंधर माई थब थू थब काब जा मांगी बिजनेस तब जा रहे कॉस्ट इफेक्टिव है तरह अहम इन्वेस्टमेंट खर चंगे पूरा येगी की लेजर से सेफ हो लेजर हजिसे लेजर की है तरहको लेजर फजन तौर यहां चौरगदी ओपन तौर
1: लौटपी
0: लू हूल तब कानदब लेजर तब कम से खादी थी लेल लौटकी फेब लेल लौटपो हेक्त हईतब से यादे लाख ओपन सर्जरी से वरी नाइब नाइब लेब अखोई फोरेन डॉक्टर मैं कन्फ्रेंस तब जाए प्रॉब्लम थोब open surgery hai bakana am ta changona to india ma sam yam chongjali hai bangin hai di foreign di yam tau dramina adi open ta dram hai traba sai gi moi ji pakatana hang ma jani india ma sam sanga mate pa operation le chale hai bakana loina hai bam changi ko ma cha de ha ga so loina kha kha hai bam changi sila
1: mm lo chalam dai ji da ojim ji bau da ko indok da na thing na bi ra ko da ko ila ana la engi thabak thorum pa khala ko si da manipur gi context da ojik nung lei bagi phibam se ojik pau ko da sai amani si da masi gi train ji decline tor por ka mai kari phibam lei ka mai thing na bi
0: ana ham ba he ro ko da di nung si am chong chong le me chong chong le ba ding sai gi cho cho ba ki ni ji pra i nung yar le ba ko pyam thing ne ba ojik se sai amani si manung di train se mo yam na chaw ba nung si thing na dri hai tar ha di ko gi so awareness lai vera khangre ko antra ada some mission ngum yam lai vera khangre but sai gi pick pa hai di am saw bunung hu ji ki stake horn kai nai hai ba saji gi machi ma le ko le ka hai ba machi gi yam rare wo re ba ha na gi yeng na ga de tu na hu ji na yam ba tai si na 2 cm gum ba de 1.5 de gi tu manage to bhai tar yam saw di thenga de sai center e
1: nung le tan ba gi matang si da ko na karam karam sin jam mang da supan bi khre lo si lo ko si da kari ki ba pham tham bi ning sai sa ba thak pa sin ja ki matang
0: chab jing sai ja ki ba 3.7 tar ko ene am stick to se ko ja ga inta bi ra ko se first balance diet se balance diet am jan to bi ro balance diet with proper water ko second ta sai gi yar ga di rat mi che khatang han da bi ro third ta sai gi thum han da bi ro ma si hom tar ga di am ba nung je han da ye
1: ha yam nung ji ki ni den nung le ba ma di ma si gi laing ha ba si gi matang da doctor na mai ra kon santajit consultant urologist raj medicity am den nam consultant urologist pishum thongbu amukana thagsari adudi sebe ma ngasi gi matam silu selak labani na silopa matang se da hanana ba tawrasi
2: poi
1: thoram ta bi ri besing bu amukana khurum jari

门爱恩你来了唱得痛了一本心苦闷里不我弄爱看不能喊得那么么天路会浪可的我不能浪脸么咋推比比么那痛里不沾老烟唱不天可了可这老可这里还得搞给他的这老爸爸帮忙都那么么眼前没一下不得好不给弄给弄ले मता के सरेन पान छाबगा हाय मंगन मरु अनौ बदुगा तुम हन लै खाइबगे मध्ये न मनि दोइ पण सिंगबो चिंग नुंगांगा फक्का थांग चिंग चिंग द हौब चंगबि ल भू मयोन अनौ बदुगा थोंबगे मध्ये न मनि तुंग लाबिगे गा की जौदो लुगन नाव ग कक्के हायरे ग थाव न चि कोन तौरे रगा मध्ये न मसु हाबिए पण सिंगबो लोकता के खजिंग को फाबिगा हाइक रक येले ग थाव न चि कोन तौरे रगा कंग न नौबगे मध्ये न मनि हाय नै दो ले मानी मासी

0: ดูอูฮิดาคุเลยมักยายปนี
1: ่ปีดูเห็บปะไก่หนูปีดูเห็บปะ
0: ก็มาปีดูอูปนี
1: ่ไอ้เดี๋ยวมาหินารวยดิ
0: ดูอะไรก็เนี่ยเนี่ยนั่นเนี่ยถูกไปเลยหรอทิ้งเลยไอ้จ
1: ัล
0: เลย
1: จะคิดไปยารวยเห็บปะจะคิดไปยารวยเห็บปะจะคิดไปยารวยเห็บปะ
0: กิบยารุไอ้ชินควาชิจินีเนี่ยไก่นึกจริงเดียชีทาดูทาดูไอ้ปุ๊นี่จะกิบชิยายารุไอ้ชินเดียนะจะกิฮาร์ดีเนี่ยงางีดักชานะปิรังเวดะอะดูคิดเดะบะยาวดึนกาวดีเนี่ยบะชีดูยาวดีนึงก็ซายเนี่ยเลยดูดรอยบ่เฮ้ยมานั่นจุยเปมะนี่มาล่ะกูดูจะขะยามละหูเปียดอมะจิมะติตอกเดนะบะไก่ขังทะบะชีดะทาบะชีดะคุณกระปุ๊นี่มึงดูข้างบ่าเฮ้ยเราไม่ได้ไก่ดิไอ้ไก่ดิไอ้ชุยไก่ดิ nupi ma pam de gi lawra ga ne sa bo do na mai du kai tro
2: ma adu kai tro ge
0: thab
1: chuning da ba joari nangon da ne ai pun si se ma nga ba ni ko ai anga ma ta ngai de ngai da ne yum da hala wai da ni ma hai da ma ba ni nong ai gok chak chi ni ko nang
0: adu di pare ne adu di pare ne
1: e kai di pare ba
0: i ba ni te cha mi na ga lo de ke no adu ma bu he ne pare ni ma chi ma chi lo ga da ba
1: lo ye i kai gi di hai da da na thab chuning da ba joari ka tan nang ga pul ga ne ai yum du sa pa nga mo ye
0: चकदबने युमजी दसु अखोई मावने तोगाने पिजेरे अखोई निदी उपाय लेद्रमिने न्यू देले रु बतावा
1: हाइमा ए नंगसिदी अगपमिनी हे अगपमिनी को नंग अखोई दे याउंग इलागा लेगे सिनिने नंग हाइसे हा इकाई म कनिम त खंग जब चाला हाइबा नंग बो हा याउंग इन मनु पासिने तंग खाइसि मनु पाकवे तंग खाइसि बा
0: ओ तंग खाइसि गेरा मपुम सिगरा हाइनिंग गे हाजे जन आइदि करीम ते काई विदि से मतम से आयो रे चल लगी मी में जा पीरो ओ मी
1: या रोई है बा छिन सिस्ती या रोई है बा
0: ओई मुसि
1: छिन
0: तन जाई ना का चेन कर
1: मसे चेन के तो इने मसे मैं काने रे को तो सब ना हेलो हेलो आशी ऐ से लम जेन याम ने यांग खा पोनी को नेशनल की था तने 100 मीटर रे ने गोल्ड मेडल के आरंग ने लौर के बदो नम नम हेलो आशी ने को हेलो
0: मैं तो नहीं तो सी सीन बस यार दूरी तो इस माने तो तने को तो चेलो ये से सीन दो पीरो से हिदा तो इले रम के से ले
1: पीरो है बा करी से नो पीरो है बा
0: मैं आज दे दे कराई दे को लगे हिदा तू ले के दुई बा पूरी कागज से गेम तो सुयाव गया सा भाव को मिलो दे ले लगे ने थक दू दे खंगा बा चल के से
1: नंगी ना गुंजे ई पचन खम मजा नी को जवार की ता तो आई वोन ने हौजी तोरा अनो है बा
0: हई मो
1: यू था अम बदगी मदु आई ना लान तो बदगी नंग तो खे दना
0: होई ने होई ने
1: हौसिक अमु थबक सुनिंग दबा अहाव बदि तनिंग बा जवारी कतन मयाम दुगन खोटिन न वथिंगाव दोरी न सो हा ना सा ले री काई सिनंग करीम त खंद्र बरा है बा युम नगी लौबे याम म खै लौरे हौजी लौरो रे
0: अंगा अंगा कपी ने कई नो
1: कन मना ngam sin maro lama si sing the pai yo ba ngam sin the pai yo ba
0: sai lo
1: ta i ta i ni ta uri sit ni nang an ka si
0: ai di hai na gi dre
1: se kori no hai na da bai si bu
0: pu pu de ma ne ne chi di e pu si ta ka oi de ta i ni ni ta uri si ta de ai si
1: i i अनि नि का सुतौ से से से से
0: ढक त पाई वो अगा गी आई आई रे ते पा
1: ओ नो ना त पाई होय बा आई ने तौ से से हेन मंगा तने
0: अदु दि नंग न मम्मा
1: ता सा बदि मम्मा न तब रो मम्मा न तब रहे बा
0: मम्मा न मम्मा न तो गदु बा
1: अस गांग से रो ल मक पने से से से से गांग नि रा तो दा न ले बियो से
0: पिरे दे के लोग थोरे इने अदु न सा न को पिरे दि ता तु सा न आंग न दु पिथो दो उ छु न न ग ले रे न आई चले को आई चले
3: इताऊ जाओ बने तो नहीं मुझे ये थोड़ा अंदर कुछ चट तो नहीं रिश्वो कांग निंगा सीधे हाउ लोग सेम कोट के बा इताऊ वो इताऊ
4: ओ ताऊ
3: ऐ कोई की कुबा कुबम नूदा माया कुबा कुरु सिलाऊ
4: है ना चे नुपी ना ताने मीनं बो कन नंगा कनो बा
3: हेरे तो मेमचा की खुदो मिदे उंगलो बरे तो बो
4: हेरो
3: आइना हंदंग मरा आइ खोई की लेबुंग बम बम दरी मतम चाने लागते हाय बसिदि मेमचा की सो की थोरी न पुन घरमाने नि तौदि
4: हदु की वाहन ते दै तो यु आइ ने जुआ सानेरी ने ने सानेरी से सीएल तुम दि नो मते याव पोत
3: कि मन खब हाय बदु नि तो अदु लाओ हौरो सेबा सेन खरे बुरो ngarang mang kido phukap ngam ri yong seba
4: ai ne he nang sa de gi chang ing ban ni ne ada si nu leite de ne tou ri ne wan ni
3: adu men cha de gi kong lo ru ya do adu ga horen sen do tuong la ga tok sing lo re
4: oi ne ada isa do ngarang de gi ne ma sangam de ne leidi ba

0: हैं जनलब नी नेता चाहो वा
1: हाँ कर जमीन कर बाई दुनी आयो आये
0: हो जी की मत समझे जान अमन नेता चाहो वा कई जुलाई तो वो पीट लाओ बामर की सुने फेसबुक तो एक तो थागल लप थागल चंनिंग बगन तीन क्रिएटर से मसिंग थिंग अम दन ले रीम नी नेता चाहो वा
2: इफ़ुंगो कई नो फेसबुक तो बायरल सा लब रहा है सिबो
0: सलाह रे ते मत सलाह रे
2: लोहे रे तो कोई दे आई की जब न मो पुनो लोहे रे तो को आई दी येंग बु येंग लुदी ने तोर से काय खे द को आई वेरा मदी ने साइ न लेकर अहो ब म थी दगन आई लो लम मनी बा काय द ब्रो नंग बो
0: ता सो फा कोइ नो कुत ये छि सु खर थिन सो ब्रो
1: कुत सी दि ने माइरा पाइ बी मे आम दे ना थोक न बा ना संबंध दु चोंग ब द चोक ब
0: हाय माय
1: माय आई सरु जे मई चले अदो प्रस्ते तो लियंग बको पगा अबा तया दे
0: ए ता सो बा माय दुदी कयम शो पजानो फीदों त हंगु उई छि दना
2: इबुङो फसर बनी से आइ हंगु के से
1: काई नु
0: काई नु तो हे दना सिदी ओई थंग बगी पिशुम लाइ बक सेरुम लाइते माने खै दना
2: फसर बनी फसर बनी
0: ता सो बा हंद की दशा सि खरा फत्र मा लेबो पांजी की लोंदा दग हायरगना थवान मिचक लोकप तताबा फम नलिसै मरुद फमब गायबदो ओइरम ताई कमाई तो ग्रिमुसिबो
2: नापी फालम बदगिने हापेल मछेलगा मोजा फुरी लमलीलगा मिजा ऐ थोंगान फावबदं हंगत लंदा ngai हकतंग हक्सिक लांगु खिगेनने अइंगोन दहाइजिन नरमगने जोआ शाना फमद चटखिबा
1: मिजा
2: ऐने खलिने ngahangidi thabong manama phawa suning da ma na ngasi na pi phalami se kari gi noina ina khalle ba
1: mu ngai de da komep cha ai
0: kan na ngai ta sa ban na ra ni
1: ngang ba su ya de
2: hau ji de ya asum ba ha ra ba ni ne sao ne ngam ne
1: na tei ma ne de ne mong nu ngai de cha khin nu na hai ji ba ne ba a dai ne ne khra khang ge ne i kai ba nang jo wa bi du ne ne kari do jo a cha na ru gi chat pa ne a da चिकी वो बुयाओ देंगो ना तो मकाय रोम के मुझाओ तो खुदो तो अम्म पी गे आरे का लुपाल सिंह मंगा और तो नगवा नगांग ने रे का पूरा पा अच्छ आहान बा मुनी रखती ने अच्छ चो चो बची चंगक तो ना कई आदि नुमाई रे ऐं जा रे रे अदु देगी ये ना शेमां खुदी म पुकत पंगा मने सिंगी तो ना ऐं कले चा आई आई आई
0: ता सो
1: आई हो से
0: अदु शेल भी आम तो नो ब्रो
1: अदु से दी मतंग मतंग सुम अमु मांग बहु रे मतंग जुगर तिंजि लगपा पाकत पमग लोइन ने साना पदु ते जो आडो आइन गुलाम भरप तमुक पा अनु न गुलाम तिहेनु हित बुथो राबनी ना आइन पाकत पगल बने ने मसि दी मसि तत लग तत तत रग तत ने एका भलप त आयो बु पसांगे पुल पाबने ने आपर हदु गति अमु जोंग न एका पिया बुतो पदी दी उपाय ले त्रे र
0: अच्छा ओ बजवाणी ने गरांग सि दी ता सवा
2: सुई ममई ने सुंबया द बगुम ने जुआर दे एदि ओय बसिं सि दी ने सुम थोक पे या दे कोई बुङो
1: हदु दे दी लुपाल सिंग नि दंग हाय द नै ना मुजाव द कि पुरे हंद मुग लोग द दि युम द हंजिन ब फरक तार ने ना आइ सि लाइ चे न खुरम मग चि जि अमक लोना मसले ये पने पने
0: जी मु ये पुरा
1: चेक चिन्ने ये चा पने प
0: स्टार सब
1: अमु जाओ नु ठोक रे मीने ए आई नी ये ते न कं ये ते ले अदु रे दी खुद याव न त पुने रे मीने आई न फु बुदी मंगो द पान द बा अदु ग अमु जाओ नु थल प किन जी दी आई गी माई द द न त न पान द ब म फम जी अमे ते याव द रे बने आई आई आई ए अमु जाओ नु ने मसा खरो कलम बगी तो गुनी को न त्रिमा माशा की ना इन फुरम गदम नि है
0: यम लिंग ने ता चचा व स्वार नि
1: मदे दी इलेक्ट्रिक पोसी गों गों गों गों गों गों गों गों गों गों किंग अप दे दी फुन ब दु तु एतना हां मेरा पाई भी मैं अंदर लाग ब दे दी जो आछा ने ब काम बु दु लोई जे ने करे हां आई यू जी एन गेन तो रिंग ए तो दा ए की मोजा फुरि छि तुंग लोम दे की ता हित पा बई वा ने में
0: मधुमग्ने फेसबुक त थागा लक्त नाइन थेंगरी सिसु
1: अवां थंगबु दुदा संबंध दु मसि दि काना पुदे चोंग क छिए लगे दना तौब द पल्लग ये छन न ता दि छि छि छि छि ने आ मि कु दि छि आइ छि छोई ने बस खोंग दे सु सु बया वे ओ थोंग न वा ने युम योर का अ कु तुम बग मि जागन होस्ता द पुदना डॉक्टर सिंह दु न मरो मा आइ मा जिए ꯌꯦꯡꯕꯗꯅ ꯄꯪꯂꯣꯛꯂꯣꯛꯄ
2: ꯁꯥꯟꯅꯈꯣꯗꯅ ꯖꯣꯔꯗꯣ ꯁꯥꯟꯅꯈꯣꯕ
1: ꯁꯥꯟꯅꯔꯔꯣ ꯌꯦ ꯃꯆꯥ ꯑꯩ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯖꯣꯔ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩ ꯆꯨꯛꯆꯥꯟ ꯁꯥꯟꯅꯔꯔꯣ ꯇꯥꯖꯕ

का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, रात की इस नरम चादर में जब दिन की भागदौड़ थोड़ी सी थम जाती है और ख्याल धीरे धीरे यादों का दामन थाम लेते हैं, ऐसे ही एक खूबसूरत सफर में हम आपके साथ रहते हैं। मैं हूं आज आपका हम सफर, आपका दोस्त शमीम खान, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार, जहां बातें होंगी पुराने दिनों की, महकती यादों की और कुछ अनकहे एहसासों की, थोड़ी सी मोहब्बत और बहुत सारी सकारात्मक सोच की। वो तो कहते हैं ना कि कुछ यादें उम्र नहीं पूछती, बस एक धुन सुनते ही लौट आती हैं। तो चलिए आज की इस शाम को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों कुछ गीत गीत नहीं होते, जैसे पुरानी डायरी में रखा हुआ गुलाब जिसकी खुशबू वक्त के साथ भी फीकी नहीं पड़ती। दोस्तों जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी तेज रफ्तार तो कभी ठहरी हुई, मगर हर मोड़ पर कोई ना कोई खूबसूरत कहानी छोड़ जाती है। अगर आज का आपका दिन थोड़ा थका देने वाला रहा हो तो बस इतना याद रखिए कि हर शाम अपने साथ एक उम्मीद लेकर आती है कि कल की सुबह शायद कुछ और बेहतर होगी। और अब पेश खिदमत है एक ऐसा गीत जो शायद कभी आपके दिल की खिड़की पर जरूर दस्तक देकर गुजरा होगा।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कार्यक्रम चल रहा है हरसिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि पुरानी यादों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो हमें पीछे नहीं ले जाती, बल्कि ये एहसास दिलाती हैं कि हमने कितना सुंदर सफर तय किया है। किसी बारिश की शाम, रेडियो पर बजता हुआ कोई गीत, और किसी का मुस्कुरा देना, या किसी का चिट्ठी का इंतजार करना। और मोहब्बत, मोहब्बत हमेशा बड़े बड़े इजहारों में नहीं मिलती, कभी कभी वो चाय के कप में पूछे गए छोटे से सवाल में होती है। ठीक इस गीत की तरह, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हरसिंगार और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें लगता है कि बहुत कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन शायद जो मिला है उसकी तरफ देखने का हमें वक्त ही नहीं मिला। एक छोटी सी बात है कि खुश रहने के लिए जिंदगी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस दिल का शुक्रगुजार होना काफी होता है। और अब जो गीत आ रहा है आपके लिए, उसे सुनते हुए शायद आपको किसी की याद जरूर आए, और अगर आए तो बस धीरे से मुस्कुरा दीजिएगा।

मोहब्बत कितना खूबसूरत लफ्ज है ना, लेकिन मोहब्बत सिर्फ किसी से मिलने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी किसी की खुशी की दुआ करने का नाम भी होता है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, जहां सच्चा अपनापन वहीं मिलता है जहां आपको बदलने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश की जाए। रात खामोश है, चांद भी कुछ सोचता होगा, किसी की याद में कोई जरूर मुस्कुराता होगा। लीजिए अब वक्त है कार्यक्रम के अगले और आखिरी गीत का, और इसी गीत के साथ अपने दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम हर सिंगार से मुलाकात होती है आपसे अगले कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में। ये लीजिए वो गीत, आपकी तरफ यूं आ गया।

0: विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी

0: आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग

0: साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिनमें 1267 यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, कड़ी और समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus President said, both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorist and terrorist entities, including those under 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितना प्यारा है ये रात का समा, जब सोचने के लिए कुछ नहीं, बस खामोशी ही खामोशी। कंपेयर किया जाए तो दोपहर से थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है और दिल कुछ देर के लिए हर उलझन से आजाद महसूस कर रहा है।

ये वादा रहा फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन ने संगीत दिया। इन लफ्जों में एक अजीब से अपनेपन की भरी तसल्ली है, जैसे बरसों बाद भी कोई रिश्ता दिल में वैसा ही महफूज हो। रात की खामोशी में जब ये गीत बजता है तो बीते हुए लम्हे, पुरानी मुस्कुराहटें और अधूरी बातें सब धीरे धीरे याद आने लगती हैं।

बड़े दिलवाला फिल्म से आपने गाना सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहीं न जा, आज कहीं न जा, दिल के ये लम्हे फिर लौट कर कहाँ आएंगे। बस यूं ही पास बैठे रहो कि खामोशी भी आज कोई मीठा सा गीत लग रही है।

याराना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 यानी 90 जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

दर्द फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। अहले दिल अक्सर अपने जज्बातों का शोर दुनिया को नहीं सुनाते, वो मुस्कुराहटों के पीछे तकलीफ छुपा लेते हैं और अपने हिस्से का दर्द खामोशी से सह लेते हैं। शायद इसी खामोशी में उनकी मोहब्बत की गहराई और दिल की मजबूती दिखाई देती है।

बंधन फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 43 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण ने पणजी गोवा में उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 का आयोजन किया। इसमें समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for strengthening and multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit to the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1,267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorist financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism through the United Nations and the Financial Action Task Force. They reiterated their zero-tolerance approach to terrorism, rejecting double standards, state-sponsored terrorism and any justification for such acts under any circumstances. The two leaders agreed to deepen defense and security cooperation, including through collaboration between their respective defense industries, with a special focus on cybersecurity and emerging technologies. Welcoming the India-Cyprus bilateral defense cooperation program signed in February this year, the two leaders underscored the potential for significant cooperation in the defense sector. The leaders welcomed the conclusion of the roadmap for bilateral defense cooperation.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

पावर हाउस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया रवि ने। दिले नादान गम से यूं न घबराना, जिंदगी की राहों में खुशी और उदासी दोनों साथ चलती हैं। कभी कोई याद दिल को बेचैन करती है तो कभी वही याद जीने का सहारा बन जाती है। दिल अगर सच्चा हो तो दर्द भी उसे और गहरा और खूबसूरत बना देता है।

दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में। केएल परदेसी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। रात जब खामोश होती है तो दिल की दबी हुई बातें और भी साफ सुनाई देने लगती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ दिया जाए तो नींद नहीं सिर्फ बेचैनी लौटती है। कभी कभी तन्हाई ही इंसान की सबसे अच्छी हमसफर बन जाती है।

की कमी और गहरी महसूस होती है। दिल चाहता है कि कोई पास बैठे, कुछ न कहे, बस साथ होने का एहसास दे।

चार दिल और चार राहें फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। कुछ मुलाकातें इतनी कीमती होती हैं कि उनका इंतजार भी अपने आप में एक एहसास बन जाता है। दिल हर आहट पर ठहर जाता है, हर गुजरते पल से यही कहता है कि शायद अब वो सामने आ जाए। मोहब्बत में कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका इंतजार होता है।

जहां आरा फिल्म का गाना आपने सुना, रफी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 43 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

पठान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। इसे लिखा ऐश कंवल ने और संगीत दिया जिमी ने। जब कोई दिल में गहराई से बस जाता है तो फिर आसपास की दुनिया धीरे धीरे धुंधली लगने लगती है। हर बात, हर रास्ता, हर खामोशी उसी की याद से जुड़ जाती है। इंसान लोगों के बीच रहकर भी कहीं भीतर अकेला हो जाता है, जैसे उसकी सारी दुनिया सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमट आई हो।

आसमान फिल्म का गाना आपने सुना सीएच आत्मा की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। ये दुनिया भी अजीब है, कभी छोटी सी मोहब्बत को ठुकरा देती है और कभी दिखावे को सर आंखों पर बिठा लेती है। इंसान जितना लोगों को समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। शायद इसीलिए सुकून अक्सर भीड़ में नहीं अपने ख्यालों और चंद सच्चे रिश्तों में मिलता है।

सगाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और तलत की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सुहागन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। किसी का साथ इतना अजीज होता है कि उसकी मुस्कान में सुकून और उसकी मौजूदगी में पूरी दुनिया नजर आने लगती है। तब मोहब्बत सिर्फ चाहत नहीं रहती, दिल की सबसे खूबसूरत इबादत बन जाती है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। इसे कैफ इरफानी ने लिखा और संगीत दिया रोशन ने।

वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने

0: के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल Agni-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for a strengthening multilateral effort to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit of the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorism financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, disrupting terrorist networks, and combating the financing of terrorism through the United Nations and the Financial Action Task Force. They reiterated their zero-tolerance approach to terrorism, rejecting double standards, state-sponsored terrorism, and any justification for such acts under any circumstances. The two leaders agreed to deepen defense and security cooperation, including through collaboration between their respective defense industries, with a special focus on cybersecurity and emerging technologies. Welcoming the India-Cyprus Bilateral Defence Cooperation Programme, signed in February this year, the two leaders underscored the potential for significant cooperation in the defence sector. The leaders welcomed the conclusion of the roadmap for bilateral defence cooperation between the Ministries of Defence of the two countries for the period 2026-2031. As India and Cyprus are maritime nations with deep-rooted naval traditions, both leaders encouraged expanding cooperation in the maritime domain. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. He will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

भक्ति फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। सुहानी चांदनी रातें अक्सर दिल को ऐसी बेचैनी दे जाती हैं कि नींद भी आंखों के पास आकर ठहर जाती है। ठंडी हवा, खामोश गलियां और यादों में धुली कोई मीठी सी आवाज रात को और भी लंबा बना देती है। ऐसे लम्हों में इंसान सोना नहीं चाहता, बस उन एहसासों को चुपचाप जीते रहना चाहता है।

अनुरोध फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि वक्त गुजर जाने के बाद भी उनकी बातें, उनकी हंसी और उनका एहसास दिल में कहीं ठहर जाता है, और कुछ लोग तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं।

फिर धीरे धीरे यादों से उतरते चले जाते हैं। शायद फर्क रिश्तों का नहीं, एहसास की गहराई का होता है।

मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आनंद पक्षी की आवाज में। आनंद पक्षी ने ही इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:30 और ठीक 6 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना, मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों को मेरे सुरों में बसा लो, जैसे कोई मीठी धुन धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आवाज का हर एहसास मेरी खामोशियों को भी गीत बना दे, और फिर जिंदगी बस एक खूबसूरत सा साज बनकर रह जाए।

चेतना फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और लता की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इन शब्दों में जैसे पूरी दुनिया की सादगी और गहराई समाई हुई है। जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो पल अपने हों, जिन्हें किसी अपने के साथ महसूस किया जा सके, उन्हें खुलकर जी लेना चाहिए।

अवतार फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 44 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित

0: संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के वे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulos called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit of the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorism financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism through the United Nations and the Financial Action Task Force. They reiterated their zero-tolerance approach to terrorism, rejecting double standards, state-sponsored terrorism and any justification for such acts under any circumstances. The two leaders agreed to deepen defence and security cooperation, including through collaboration between their respective defence industries, with a special focus on cybersecurity and emerging technologies. Welcoming the India-Cyprus bilateral defence cooperation programme signed in February this year, the two leaders underscored the potential for significant cooperation in the defence sector. The leaders welcomed the conclusion of the roadmap for bilateral defence cooperation between the ministries of defence of the two countries for the period 2026-2031. As India and Cyprus are maritime nations with deep-rooted naval traditions, both leaders encouraged expanding cooperation in the maritime domain. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. He will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and converting this vision into reality. Central Bureau of Investigation has arrested another woman from Pune in connection with the NEET examination paper leak case. The accused has been identified as Manisha Havaldar, who had been appointed as an expert by the National Testing Agency, NTA. So far, 11 accused have been arrested from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar in connection with the case. The CBI has conducted raids at several locations across the country.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 10 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके एहसास से जुड़े होते हैं। इस गीत में मोहब्बत की वो सादगी है जो दिल को बिना शोर किए छू जाती है और ये गीत है एक बेहद खूबसूरत गीत फिल्म राजकुमार से। ये फिल्म आई थी 1964 में तुमने पुकारा और हम चले आए। सिर्फ एक गीत नहीं किसी के लिए बे इंतहा चाहत का एहसास है। जब अपना कोई दिल से पुकारे तो फासले मायने नहीं रखते बस कदम खुद ब खुद चल पड़ते हैं। ये गीत याद दिलाता है कि सच्चा प्यार इंतज़ार नहीं करता बस पुकार सुनकर चला आता है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते महसूस किए जाते हैं उनमें से ही ये भी नगमा है तुमने पुकारा और हम चले आए। बेहद खूबसूरत है नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए ख़ास तौर से। तो आइए इसी नगमे के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं।

तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। बेहद खूबसूरत ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और कोशिश भी यही करते हैं कि ये नगमे हमेशा हमारे दिल में बसे रहें और यूं ही हम भी उसे प्यार करते रहें। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में अगले नगमे के साथ। और अगला नगमा बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला। कहते हैं कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, नज़रों से शुरू होते हैं। जैसे तुम्हारी आंखों में कोई अपना सा जहां दिखता है, जहां हर खामोशी एक बात कहती है और हर मुस्कान दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आंखों में देखना ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो और वो दुनिया की सारी आवाजें बस एक एहसास में बदल गई हों। अगर मोहब्बत का कोई सबसे खूबसूरत पता होता तो शायद वो तुम्हारी आंखें होती, जहां दिल हर बार खोकर भी खुद को पा लेने की कोशिश करता। बिल्कुल इस नगमे की तरह। और ये नगमा है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में फिल्म प्यासा से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस बेहद खूबसूरत महफिल हमराही में। और आज के इस हसीन रात में मैं हूं आपका हमराही, आपका दोस्त, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, जिसमें गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो दौर था जब बेहद खूबसूरत नगमे बना करते थे और एक गीत को बनने में कई कई दिन लग जाया करते थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीक इतने विस्तार से नहीं हम लोगों के दरमियान पहुंचे थे कि हम आज की तरह उन गीतों को तैयार कर पाए। मगर वो दौर था जिसने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया, सिर्फ गीतों के जरिए ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी इन गीतों ने बहुत ही अहम किरदार अदा किए। और शायद इसीलिए ये नगमे हमारी जिंदगी से जुड़ गए और इन सब के बीच एक सबसे खूबसूरत एहसास जो हम लोगों के लिए है वो है प्यार, मोहब्बत। प्यार शायद वही होता है जब किसी एक इंसान के लिए इंसान खुद को बदलने लगे। तुमसे मिलने के बाद समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, किसी की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। तुम्हारे प्यार में जाने कितने रंग उड़ लिए हमने, कभी बेवजह मुस्कुराना सीखा तो कभी तुम्हारी यादों में घंटों खो जाना। ये दिल भी कितना अजीब है ना, तुम्हारे लिए हर बार कुछ नया बन जाने को चाहता है, बस तुम्हारे करीब रहने की एक छोटी सी वजह के लिए। अगर कोई पूछे मोहब्बत कैसी होती है तो बस इतना ही कहना, किसी एक शख्स के लिए खुद को हर रोज नए अंदाज में पा लेना, वही मोहब्बत है।

जदे फिल्म का यह नगमा था और ये आवाज़ें थी गीता दत्त और मन्ना डे साहब की। ये फिल्म आई थी 1964 में। इस फिल्म में जो म्यूज़िक दिया था वो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, हम सब के बहुत ही प्यारे सचिन देव बर्मन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप सभी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, और इस हमराही की महफिल में आप भी हमारे हमराही बनकर चल रहे हैं इस सफ़र पर, क्योंकि यह सफ़र इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है। क्या बस इस सफ़र पर यूं ही चलते रहना चाहते हैं हमारे हमराही बनकर, और हम भी आपके हमराही बनकर यूं ही बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ आपके कदम से कदम मिलाकर यूं ही चलते रहेंगे ऐसे ही नगमों के साथ। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म सहरा से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रामलाल ने।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी इस पसंदीदा महफिल में जो आपके दिल के बेहद करीब है। और गोल्डन एरा के वो सुनहरे वो खूबसूरत नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब है, उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1966 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, जिसमें मुख्य किरदार निभाया था विश्वजीत, राजश्री, प्रेम चोपड़ा, रहमान, जैन, राज मेहरा, दुर्गा कोटे, राजेंद्र नाथ, असित सेन वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रवि साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सगाई फिल्म का यह नगमा था। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में यह फिल्म आई थी 1966 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था हम सब के बहुत ही प्यारे रवि साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में मिल जाए जो आपके दिल के इतना करीब हो जाए कि बस सिर्फ आप उसी के बारे में सोचते रहें। शायद ऐसे ही नगमे हैं इस हमराही की महफिल में और आपको ज़रूर उन पुराने दिनों की याद दिलाएगा। ये ऐसा नगमा है कि कई बार आप उस दौर में चले जाते हैं जब आपकी ज़िंदगी में भी कोई था। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल में चुपचाप जगह बना लेते हैं, बिना दस्तक दिए बिना शोर मचाए। तुमसे मिलना भी कुछ ऐसा ही था जैसे किसी अधूरी दुआ को उसका जवाब मिल गया हो। तुम्हारी हंसी में सुकून है, तुम्हारी बातों में अपनापन, और तुम्हारे साथ जैसे हर मौसम थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। कभी सोचा नहीं था कि किसी का होना इतना खास लग सकता है, लेकिन अब दिल हर धड़कन में बस एक ही बात कहता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में अगर किसी को चुनना हो तो हर बार सिर्फ तुम्हें चुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी ज़रूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, और ये नगमा है 1967 में आई फिल्म नाइट इन लंदन। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने, और आवाजें हैं लता जी और महेंद्र कपूर साहब की।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

अगेश्वरी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। और हमराही में आज हूं मैं आपका हमराही, आपका दोस्त, आपके साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप भी यूं ही हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ हम भी हाजिर हैं आपके लिए इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। और ये महफिल इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी है कि वो हमें सीधे गोल्डन एरा के उस दौर में लेकर चली जाती है, क्योंकि ये दौर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। ये दौर एक ऐसा दौर था जब फिल्में हमारे समाज का आईना हुआ करती थी और फिल्में ऐसा प्रभाव डालती थी समाज पर कि बस सब कुछ ऐसा लगता था कि हमारे इर्द गिर्द चल रहा हो। फिल्में जब बनती थी तो हकीकत से काफ़ी करीब हुआ करती थी, और भले ही वो दौर बहुत पीछे छूट गया हो, लेकिन जब भी हम इसको देखते हैं, पुरानी फिल्मों को देखते हैं, गोल्डन एरा के उन फिल्मों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये दौर अभी बहुत पीछे नहीं रहा, बल्कि हमारे इर्द गिर्द आज भी अगर आप गाँव में जाएं, देहाती क्षेत्रों में जाएं, तो आज भी लगता है कि ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। वो बैलों की टोलियां और वो बैलगाड़ी, वो तांगे शायद आज भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे जब आप गाँव शहरों से दूर गाँव की तरफ रुख करेंगे। हालांकि सब कुछ बदलता जा रहा है धीरे धीरे, मगर जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने जो फिल्मों में देखा है अब भी बिल्कुल वैसा ही है। ऐसी ही एक फिल्म थी जो आई थी 1957 में, और वो फिल्म थी नया दौर। एक दौर एक गांव को शहर बनने की तरफ किस तरीके से लेकर के जाता है और किस तरीके से वहां पर चीज़ें बदलती जाती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, शमशाद बेगम और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। आप ये कह सकते हैं कि ये एक कव्वाली है तो भी गलत ना होगा। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: आशा जी और शमशाद बेगम के गाए इसी आवाज़ के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं रहूँगा आपके साथ लेकर अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की पहली भारत यात्रा शुरू करेंगे। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वे कोलकाता में मदर टेरेसा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो के विक्टोरिया मेमोरियल जाने की भी संभावना है। रविवार को श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। सोमवार को वे आगरा और जयपुर की यात्रा करेंगे और फिर मंगलवार सुबह नई दिल्ली लौटेंगे, जहां वे भारत द्वारा आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 10 सेकेंड, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है जब किसी का साथ सिर्फ साथ नहीं सुकून बन जाए, और प्यार हो तो जिंदगी मुश्किलों में भी मुस्कुराने की वजह दे देती है। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जहां प्यार और अपनापन कदम कदम पर साथ हो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो जीने का अंदाज ही बदल देते हैं, हर दिन एक नई कहानी लिखती है और प्यार उसे खूबसूरत बना देता है। जब दिल में मोहब्बत और आंखों में उम्मीद हो तो जिंदगी और मौसम में हसीन लगती है। सही इंसान का साथ मिल जाए तो फिर साधारण आम से जिंदगी भी किसी खूबसूरत गीत जैसी लगती है, जैसे फिल्म उजाला का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आइए आज के इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं, अरुणिमा के सफर का आगाज करते हैं इसी नगमे के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर बेहद खूबसूरत महफिल अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाजों में नगमा था फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल से। यह फिल्म आई थी 1981 में और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। अरुणिमा की इस महफिल में हम बात जिंदगी से जुड़ी हुई जिंदगी की बातें करते हैं। जिंदगी में भले ही कितनी मुश्किलात आए, भले कितनी परेशानियां आए, लेकिन जिंदगी को हंसी खुशी के साथ अगर आप प्यार से बढ़ाते हैं तो बस जिंदगी खूबसूरत बन ही जाती है। कहते हैं सही इंसान का साथ मिल जाए तो साधारण सी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत बन जाती है। अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी की भाग दौड़ में अगर कोई मुस्कुराने की वजह बन जाए, वही सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, वही सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ ज़िंदगी हर दिन एक

उम्मीद लेकर आती है और इसी उम्मीद के साथ हम भी ज़िंदगी को बड़े ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही चुलबुला सा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म शागिर्द से। ये फिल्म आई थी 1967 में, जिसमें बेहद खूबसूरत कलाकारों ने काम किया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके नगमे भी बनाए गए थे। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जॉय मुखर्जी, आईएस जौहर, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, मदनपुरी, असित सेन, ए के हंगल साहब, शिवराज और शेट्टी वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और जोगिंदर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आपके लिए।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33 और 10 सेकेंड। अरुणिमा की बेहद खूबसूरत महफिल जिसमें हम जिंदगी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की, फिल्मों के नगमों के और उन नगमों में बसी जिंदगी की। ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसमें कहते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन जब दिलों का रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद फिर से मिल जाते हैं। ये दुनिया इस नगमे के मुताबिक बहुत ही छोटी सी है

तराशते हैं और इस उम्मीद में हम जीते हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमारी मुलाकात हो जाए। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं पर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं, और कुछ लोग बस एक बार मिलकर भी दिल में हमेशा के लिए घर बना लेते हैं। जिंदगी का सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर साथ में खूबसूरत यादें हों तो हर मोड़ थोड़ा आसान लगने लगता है। मुझे अच्छा लगता है ये सोचकर कि इस छोटी सी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे रास्ते फिर से मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि सच्चे रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वो बस वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। जैसे हमारा और आपका रिश्ता बेहद गहरा, बेहद प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, अपने ईमेल्स के ज़रिए। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, और जल्दी से आप जहाँ भी इस वक्त सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं काम, आप अपने ईमेल के ज़रिए अपने दिल की बात हम तक पहुँचाइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। तब तक मैं आपको वही नगमा सुनवाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। रंगोली फिल्म का यह नगमा किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

हाँ, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। बहुत ही छोटा सा ये नगमा और बहुत ही खूबसूरत बातें। कहते हैं कि बातें कम अल्फाज में भी बहुत कुछ कह जाती हैं, छोटी सी लाइनों में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। ऐसा ही ये नगमा था कि छोटी सी ये दुनिया है, पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, फिर पूछेंगे हालचाल क्या है, कैसे हैं और अब कैसे रहें। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरीके से कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल को सुकून देते हैं। जैसे किसी अपने का हाथ थाम कर ये यकीन होना कि अब हर मुश्किल में कोई तो हमारे साथ खड़ा है। तुम्हारा साथ किसी खूबसूरत दुआ जैसा है जो हर दिन थोड़ा और हसीन बना देता है। अब खुशियां बड़ी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती है, और ऐसा तब होता है जब आपका अपना कोई आपके दिल के बेहद करीब होता है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे खूबसूरत एहसास यही दिया कि जब कोई दिल से अपना बन जाए तो हर मौसम, हर रास्ता, हर दिन, हर वक्त बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है, बहुत ही प्यारा लगने लगता है। बिल्कुल इस नगमे की तरह जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म हनीमून से। यह फिल्म आई थी 1973 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है। मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में, जिसको बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने और गीत लिखे हैं योगेश ने।